प्रोग्राम मिस हुआ था, एक हुस्न की दीवी सी मुझे, मैं अटक सी भी प्रोग्राम करता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि पठान जब भी उर्दू में बात करता है ना तो उसका जो वह बहुत दर्द करता है। सलाम इमशा भाई सिंह गुलरोय दरुस्तम ना द जुदाए।

0: या भाई छिमावा की आज का कहें आजमा हूँ पर क्या अरे आजे न्या या भाई या भाई हाँ भाई रागली तो मंगसर आ भाई वही छिमावा की नहीं आते बोले ना भाई ताबा किसे पर स्टार्ट किया दो मुखोजा खैर देने वाला नहीं रेशी भी करना
1: या बच्चे अबे बकपल काल कभी माँ बकिया जो वक्त जल उसे ये माँ बक्की वजह नहीं आ जैसे अबे बकिया जे
0: अत दल खड़े वर का बाबा वही माँ बकिया का बुई माँ बकिया का
2: नारे वहम पजूरा पुरबान दस्तर गुतूरा
0: या चाहिए अगर ऐसा जाए माँ अखिल ये ऊपर जो बजे किम से जाए जावल क्या अगर ऐसा चल जाए ना मुझे औजत का

ना बिल्कुल जनाब दादी फिमट 80.4 रेडियो मन बटग्राम ने माताबेलेशी निजाम सही दासतस बेलेशी राखकार दाबतास मुंह तो पखपला वाए।

उखंदल माल सिमेस नाराजी मी आईसा हा हा मेसेज को ग्रान न दे ओ खबर मक्का द मलुक अमलुक यौकसो मलुक निमी उन अबल्लार शाह तैली पुआ जो नामलुक शो यो लगे दले ऊपर अगी दीवाल वाले लिकली तनोली ग्रुप बल्लार ती तिलर कलन आगे न नोले ग्रुप शो शादी जा के बरे यो चौक दे कंडर चौक अल्ता गाले खान लाड़ नो आगा कंडर नहीं लाउल न काप लरे कन अंडर चौक शो ब्याई ची दे अलीप तिलर कन अडर चौक शो नो ब्याई ती नुन लरे कन ब्याई अडर चौक शो नो गोरे पदी यो यो टिकी न गोरे डेर सकी गया इधर खुदा

दर्जा यो कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड आ हवा की तरह में 325 फीसद रिकॉर्ड करे शेवे दे हमदा गशान द खैबर पख्तूनख्वा पाशुमाली बरखो शंगला बेशाम कुलेपालस बटग्राम ताकोट गाजी और कोहिस्तान के दहरत दर्जा 23 डिग्री सेंटीग्रेड आ और हवा की तरह में 325 फीसद रिकॉर्ड करे शेवे दे हमदा गशान नरन शहर वो मिनट रपासा पाशपक बजी सिर वहली और नन माखाम दो मिनट कम पाशपक बजी बा डूबेगी हमदा उतर दे तमाम अहम न्यूज अपडेट तासु और दो अहमद जारना द नूर खबर او معلومات لپاره امن ریڈیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ورکه مجال لیجه دلوی الله.

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

फुफा जी दा मिलेगी। ये रे पेशो करप्शन में कतले हो, खुद कोनो में नो कतले।